स्प्रिंग अपने फुल स्विंग में है और स्प्रिंग के साथ ही इस फेस्टिवल का सीजन भी शुरू हो जाता है। और इस हफ्ते हमने इमर्जिया में जो एएनयू का मिनी मल्टीकल्चरल फेस्टिवल है उसमें जुम्बा की डांस परफॉर्मेंस की और बहुत लोगों ने इसको एंजॉय किया। गणपति का फेस्टिवल भी चल रहा है इस हफ्ते और बहुत सारे लोगों ने अपने घर में गणपति को बुलाया और बहुत ही प्यार से उनको रखा और उनको विदाई दी। तो ये गाना जो आपने अभी सुना ये था डेडिकेटेड गणपति फेस्टिवल के लिए। और आने वाले जो गाने हैं अब आप सुनेंगे वो होंगे बहुत सारे डांस म्यूजिक से इंस्पायर्ड और डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन और वेवलेंथ के साथ आपके पास मैं लेके आ रहा हूँ ये शो एसीटी देसी का, जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा और 4:00 इन इंडिया ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर रेडियो। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, किंचो।